सहायता किया। हम परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हैं और आज की आराधना में आए हुए कलिसिया विश्वासीगण, प्रभु यीशु मसीहा की कलिसिया में हमेशा स्वागत है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के देह में जोड़ा गया है। We all are added with the body of Christ. So this body, the body is we believers gathering. शरीर जो है, देह जो है, यीशु मसीह प्रभु का देह है, यानी कलीसिया। और मस्तक जो है देह के, वो मसीह है। The Christ is the head of the congregation. हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश में हम ये सीखते हैं, तीन कलीसिया, यानी कि two congregations, it means different area conducting the Lord's church activities. अलग अलग जगहों में, अलग अलग देश में यीशु मसीह प्रभु के कलिसिया, प्रभु कलिसिया का काम करता जाता है। और ये काम बड़ी ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। ये कार्य जो है, इट मीन्स दिस इज द होली स्पिरिट एक्टिविटीज इन द न्यू टेस्टमेंट, स्टार्टेड इन द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2। द फर्स्ट बोर्न चर्च हैज बिल्ट इट अकॉर्डिंग टू द गॉड्स प्लान ऑफ सेल्वेशन। And from the book of chapter 2, the first world church started, and the church conducting since Lord Jesus Christ's resurrection from the burial, and the Holy Spirit conducted the activities through the apostles, and apostles preached the gospel, and many people repented and accepted Lord Jesus Christ, that Lord Jesus Christ my our personal savior, and they were baptized. According to the Holy Scripture, 3,000 people at that time. The scriptural church, Masiha ki Kalisiya church, started. And from that age, according to the New Testament history, the church started and conducting same church, same pattern, same body since 2026 years till today. It means, इसका मतलब ऐसा हुआ जैसा यीशु मसीह प्रभु के कलिसिया, जैसा परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर ने मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए योजना बनाई, मनुष्यों के लिए पापों की क्षमा का परमेश्वर ने योजना बनाई थी, और वो योजना परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी भविष्य भक्तों के जरिए। भविष्य में होने वाला बात जो है, जब समय पूरा हुआ, when the time fulfilled, God sent the Christ, the Son of God, has came upon the world, according to the Galatians chapter 4:4. गलातियों की किताब उसकी 4:4 में जैसा लिखा है, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा। जब आप परमेश्वर की संतान हैं,
परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारा पिता का गुण, पिता का लक्षण, पिता का मकसद जानकारी करना चाहिए। परमेश्वर का कलीसिया में आया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खाली हमारी शरीर यहां उपस्थित है, हमारी माइंड एब्सेंट है, हम खाली सोचते हैं और कुछ सीखते नहीं है, पवित्र बाइबल का वचन समझते नहीं है और उसको मन में नहीं रखते हैं, उसको विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास को क्रिया में नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं है परमेश्वर का विश्वासी लोग, परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग। यदि अगर ऐसा होते हमारी विश्वास जो है व्यर्थ हो जाता। आज की हमारी इस टेक्स्ट वर्ड जो है, हम लोगों के पाठ जो है, आप कोई जोर से पढ़ते हैं क्या? द बुक ऑफ एनी प्रेरितों का कार्य, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 32 अप टू 34। उसमें हम ये सीखते हैं, हम लोगों को कलीसिया लोगों को सिखाता है, खुद सीखता है विश्वासी, और इस तरह से परमेश्वर का परमेश्वर कबूल करने वाली आराधना। वी आर कंडक्टिंग द एक्सेप्टेड गॉड एक्सेप्टेड वर्शिप दैट वी आर कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू द होली स्क्रिप्चर्स। और ये वचन जो है हम लोगों को यहां ऐसा बताया जाता है, प्रेरितों का उनकी 17 अध्याय में 10 वचन से लेके जब हम पढ़ते हैं, यहां दो कलीसिया है। वो कैसे कलीसिया है हम पढ़ते हैं, वो दो कलीसिया ऐसा है कि प्रेरितों का मृत्यु उसका 17 अध्याय की 10 वचन में 10 वचन बताता है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को गिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों की आराधनालय में क्या हुआ, आराधनालय में गए। अभी हम सब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय में आए। देखो परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, चाहे वो सेवक होने दो या विश्वासी गण होने दो, विश्वासी गण भी सेवक ही है। सेवा कहने के चर्च के लिए वो नियुक्त किया रहता है, चर्च रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन योर शोल्डर्स। इस कलीसिया का जो जवाबदारी है, वचन प्रचार करने की जवाबदारी और कलीसिया के अंदर वचन के अनुसार या पवित्र बाइबल के नियम के मुताबिक कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, विश्वासी लोग उस तरह से प्रभु के अंदर इस कलीसिया में रहते हैं, उनकी परिवारों में इस तरह का भक्ति परमेश्वर की धार्मिकता रखते हैं या नहीं रखते, यह सब देखने की वो सेवक का जवाबदारी। इसको संत पौलुस के माध्यम से द होली स्पिरिट गॉड कमांडिंग

talk as such. This is your duty. And teach them. And observe them. Congregation ko dhyan de. Wo log kaise vishwas mein jeete hain. Kyunki pavitratma parmeshwar ye dhyan deta hai kalisiya mein. Ki log us tarah se aradhana karte hain nahi hai. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को ये सावधान करते हैं, ये सावधान करते हैं प्रेरितों का 20 अध्याय 28 वचन में संत पौलुस बोलते हैं, संत पौलुस का पवित्र आत्मा का शिक्षा जो है द होली स्पिरिट टीचिंग फॉर द चर्चेस, नया नियम के अंदर कलीसिया कैसे चलना मांगता है पवित्र आत्मा परमेश्वर सेवकों के जरिए और कलीसिया के अंदर वो सिस्टम सेटअप करता है, उसको सिस्टम न्यू टेस्टमेंट के नियम के अनुसार पद्धति को चलाने का पद्धति, यानी मसीहा की कलीसिया में किस तरह का आराधना करना चाहिए, किस तरह का प्रार्थना करना चाहिए और भाइयों का क्या जवाबदारी है, बहनों का क्या जवाबदारी है, द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ब्रदरिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टर्स, सिस्टर लोगों को क्या काम करना चाहिए, ब्रदर लोगों को क्या कैसे काम करना चाहिए, किसको क्या क्या तलांत दिया गया है, सिस्टर लोगों को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, सिस्टर लोग कैसे सिस्टरों के बीच में, स्त्रियों के बीच में स्त्री कैसे बाइबल टीच करना चाहिए, बच्चों को कैसा शिक्षा सिखाना चाहिए और भाइयों पुरुषों के बीच में कैसे उनको सिखाना चाहिए, ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या सिखाने की पद्धति। और एक तरीका है जनरली, यानी कि सिस्टर और ब्रदर्स दोनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स दोनों मिलके एक जगह में है तो उस समय कैसे लीड करना चाहिए कांग्रीगेशन को, यह सारी बात जो है पवित्र बाइबल में हम लोगों को सिखाया गया है, उस पैटर्न को लेके हमको भी कार्य करना है। और आज के हमारे इस संदेश में अकॉर्डिंग टू द इधर टेक्स्ट वर्ड दिया है एज रिटन हियर द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 30 अप टू 34, उसके अलावा पवित्र आत्मा परमेश्वर और एक बात यहां सिखाते हैं और वो निकाले जोर से पढ़ते हैं फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 19।

0: रीड इट कम्प्लीट प्लीज।
1: यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं,
0: यदि हम इसी जीवन में मसीहा में आशा रखते हैं,
1: तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं।
0: सभी मनुष्यों से हम अभाग्य हैं। हम प्रभु के वचन में ये क्या देखते हैं, विश्वासियों में बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं, जो ये कुछ लोग नहीं सीखते। देखो वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और वचन के जरिए हम आशीष को ग्रहण करते हैं थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द होली स्पिरिट, होली स्क्रिप्चर्स मैसेजेस वी कैन गेट द रिचुअल ब्लेसिंग्स इन द वर्शिप। This is the aim of attending, this is the aim of worship, this is the aim of teaching. इस तरह का आराधना में उपस्थित होने के लिए, आराधना में सीखने के लिए, आराधना में पढ़ने के लिए, आराधना में प्रभु का पवित्र वचन ध्यान करने के लिए, इस तरह का एक डॉक्ट्रिन को सेटअप करता है होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इन द कांग्रीगेशन कलीसिया। प्रियजनों क्या बोलते हैं, पहला कोरिंथी 15:9 के मराठी मध्ये जोरात वाचायचं, हिंदी में तो अच्छा पढ़ा है ब्रदर। हाँ, उसको हिंदी में क्या बताया, सिर्फ मनुष्यों के जैसा हमने इस दुनिया के अंदर जब तक हम जीते हैं, अप टू अवर डेथ फिजिकली अपॉन दिस अर्थ, दैट मच ओनली वी हैव इन द ग्रेट होप इन क्राइस्ट, ऐसा बोलते हैं। हम शारीरिक जिंदगी जब तक जीते हैं, तब तक यीशु मसीह प्रभु में हम आशा रखते हैं, बराबर, और उसके बाद आशा नहीं है, और उसके बाद इनको इनको ये देर इज नो एनी होप आफ्टर द डेथ, व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द डेथ, दैट मच ऑफ रिजरेक्शन एक्सपीरियंस दे डोंट हैव इन द बिलीवर्स और वर्शिपर्स। अब बात ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या सिखाता है यहां, इसमें कुछ ऐसा लोग हैं, इसमें कुछ ऐसा लोग हैं कि जब तक हम शारीरिक जिंदगी जीते हैं, उतना समय तक हम प्रभु में आशा रखते हैं। आशा क्या रखते हैं, हमको रोजी रोटी मिलेंगे, भौतिक विषय में हमको भौतिक यही है ना, दिस इज ओनली द फिजिकल लाइफ, शारीरिक जिंदगी लहू मांस के लिए, दिन गुजारने के लिए, उम्र जिंदगी गुजारने के लिए, अप टू दिस वर्ल्ड, अप टू दिस ह्यूमन लाइफ, जब तक हम इस भौतिक जिंदगी जिएंगे, तब तक ही है यदि हम आशा रखते हैं, और उसके बाद ये आशा यदि हम नहीं रखते हैं, इस बात की तुमको कोई ज्ञान नहीं है, कोई सीखता नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, यदि अगर ऐसा आप करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या सिखाते हैं, फिर सारी मनुष्य जितने लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आधार्मिक लोग हैं, जो लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं, उससे भी गए गुजरे, बराबर, दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर एक बार हिंदी में वचन पढ़ते, पहला कुरिंथियों की 15:19 राइट।
1: यदि हम केवल इसी जीवन में
0: इसी जीवन यानी कि अप टू दिस ह्यूमन लाइफ ओनली, हाँ, इसी जीवन में
1: मसीह से आशा रखते हैं,
0: यीशु मसीह प्रभु के अंदर बड़ी ये होप रखते हैं, विश्वास आशा रखते हैं मसीह से, प्रभु से,
1: तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।
0: सभी मनुष्यों से अधिक अभागी, सभी मनुष्य मतलब यहां वो लोग, दे आर नॉट इन क्राइस्ट, दे आर नॉट बोर्न अगेन लाइफ, दे डोंट हैव, उनकी नैसर्गिक सी जिंदगी, मन फिरावा का जिंदगी, और पापों से पश्चाताप किया हुआ जीवन और पाप से मुक्त पाया हुआ, पाप से मुक्त पाया हुआ। वैसे तो सभी लोग अपने सभी मनुष्य के मतलब इधर बहुत गहराई और ध्यान देने वाली बात है। हम जो है हम मनुष्य है, लेकिन प्रभु के अंदर हम मनुष्य, वी आर द ह्यूमन बट बोर्न अगेन वुमन। नए सिरे से जिंदगी पाया हुआ हम भौतिक जिंदगी जी रहे, और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या मिला, यीशु मसीह प्रभु के सलीब की कुर्बानी में हम लोगों को पाप की क्षमा मिला है। इस कुर्बानी के अंदर तुमको पाप की क्षमा मिला है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स प्रभु की पवित्र महिमा की लहू हर पापों से शुद्ध करता है, हर पापों को क्षमा करता है। ये जो अनुभव है इन लोगों को नहीं है। 15 अध्याय 19 वचन में उनकी कमी घटी पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम पड़ा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर संत पौलुस को भेज के ये सिखाते हैं। भाइयों तुम जो है यहां जिंदगी जीने तक भी विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत कुछ तुमको है, और इसमें यहां अब प्रभु के वचन में आएंगे। प्रेरितों के 17 अध्याय में बत्तीस से पढ़िएगा जोर से, क्या बोलते हैं,
1: मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर,
0: मरे हुओं के पुनरुत्थान के बात सुनकर
1: कुछ तो इकट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम उससे फिर कभी सुनेंगे।
0: प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं प्रेरितों का 17 अध्याय का कि 30 में ये बताते, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। 31 में आया, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब सब सब पर प्रमाणित कर दी है। 32 में मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। देखो यहां बात गुंजाइशी में, कुछ लोग आप अलग अलग भाषा में आप भी देख लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं फिर से सुनना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू हियर अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव लर्न मच मोर अबाउट द रिजरेक्शन। पुनरुत्थान के बारे में जब यहां 31 में बताते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है तो मनुष्यों को सबको न्याय करेगा परमेश्वर, न्याय करने के बाद में धार्मिक लोगों को अनंत काल के जीवन में भेजने की, वो भी यीशु मसीह प्रभु के जरिए न्याय करने वाले हैं एट द ट्रायल, ऑनरेबल ग्रेट सुप्रीम जज, यू कैन फाइंड आउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट द सुप्रीम जज एट द टाइम ऑफ द जजमेंट वर्ल्ड। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, 21 वचन में बताते हैं, क्योंकि उसने एक दिन ऐसा ठहराया है जिनमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। यहां मनुष्य बताया है, किसको, कौन मनुष्य है वो, वो यीशु मसीह प्रभु वो जगत में मनुष्य मनुष्य को मनुष्य बोलेंगे तो समझना है, क्योंकि लिया था ह्यूमन कलिसिया में है, हम जगत में रहते हैं, शारीरिक लहू मांस के जरिए जीते हैं, तो तुमको जगत की भाषा में समझने जैसा बताएंगे तो तुमको समझना है। यहां वो खुदा है, खुदा है तो फिर आत्मा है, गॉड ऑलमाइटी इज नॉट ह्यूमन, वो भौतिक रूप से परमेश्वर नहीं है। इसलिए यहां वो मनुष्य बता रहे हैं कलीसिया के लोगों में ऐसा समझने के लिए, यीशु मसीह प्रभु को मनुष्य बता, क्योंकि वो मनुष्य के जन्म लिया है। और वो बोलते हैं पिता तूने जो भी मुझे सिखाया है, जो कुछ भी तूने मुझको दिया है काम करने के लिए, मैंने वो पूरा करके, वो काम जो तूने दिया है वो काम मैंने पूरा निभाया, पूरा फुलफिल किया है, संपूर्ण रीति से उसको मैंने पूरा किया है और तेरी महिमा किया है जगत के ऊपर। अपॉन दिस वर्ल्ड आई हैव फुलफिल्ड दैट एक्टिविटीज दैट ऑल द रूल्स व्हिच यू सबमिटेड टू मी दैट आई हैव फुलफिल्ड एंड आई ग्लोरीफाइड यू। ये वचन जो है द बुक ऑफ जॉन वर्स 17 वर्स 4 में बताते हैं यीशु मसीह को। अब बताइए यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, पिता से बात करते हैं, तूने मुझको दिया ऐसा बात करते हैं, तो पिता एक उसके बाद पुत्र अलग दिखाई देता है। यदि खुदा यीशु मसीह प्रभु भी अगर खुदा है, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में उद्धार करता, यानी कि तारनारा, मराठी में तारनारा या हिंदी में उद्धार करता, इंग्लिश में सेवियर बन के या ह्यूमन फिजिकल में नहीं आते, तो फिर वो आंखों को दिखते नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, आंखों को दिखता नहीं है, बात करता है, हुकुम देता है, सामर्थ देता है, चिन्ह चमत्कार करता है, आश्चर्य कर्म करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं किया था और कहीं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ऐसा कार्य करता है पर दिखता नहीं। दिस इज द एटीट्यूड्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और इसलिए मूसा ने प्रश्न किया है कि खुदावन तू हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तू आसमान से मन्ना बरसाते हैं, हम लोगों को खाना देते हैं, हम खाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं, और तू कहता है तेरे हाथ का लाठी को चट्टान के ऊपर रखो, हम उस चट्टान के ऊपर रखते हैं तो उसमें से पानी इतना आता है कि भरपूर, हमारा ऊंट पी लेते हैं, जानवर बकरी पी लेते हैं, पशु पी लेते हैं, भरपूर पीते हैं, नहा लेते हैं हम लोग। कितने लोग है जंगल में, ये चिन्ह चमत्कार हुआ था, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया था, कितने लोग था, कितने लोग था, 40 लाख लोग था, सिर्फ पुरुष और उनकी पत्नी उनके बच्चे ये सब पकड़ के, वो 1 करोड़ भी हो सकता, इतने लोग पानी भरपूर पिया, इतना आश्चर्य कार्य प्रभु तू करता है, तेरे वचन के अंदर इतना सामर्थ है, तेरे तू हुकुम करता है तो उस वचन के अंदर इतना सुपर पावर है, यदि हम विश्वास करता है तो वो शक्ति है। मूसा बोलते हैं इतना सब कुछ करते हैं आप, करते हैं हमारे जरिए करते हैं, हम लोग देखते हैं, आंखों से देखते हैं, उसके अनुभव करते हैं, वी हैड इन दैट एक्सपीरियंस विद योर मिरेकल्स, बट व्हाई नॉट यू इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वी कैन सी, हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं, हम क्यों नहीं आपको देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु यही बोलते हैं तूने हमको भेजा है, यानी कि वो तू पुत्र है, तू पिता है, मैं पुत्र है, इस दुनिया में पुत्र बन के आएंगे तो ये मनुष्य बन के जिएंगे, मनुष्यों के बीच में काम कर सकता है, ये परमेश्वर को मालूम है। और अभी मनुष्य परमेश्वर को सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं किया खुदावन ने, यीशु मसीह प्रभु खुदा है, यीशु मसीह प्रभु पुत्र नहीं है, यीशु मसीह प्रभु खुद बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कबूल करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लोग भी मान लिया कि परमेश्वर के पुत्र हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह प्रभु ही खुदा है। खुदा नहीं, यीशु मसीह प्रभु पुत्र है और पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद में उसने पवित्र आत्मा के रूप से फिर इस दुनिया में हमारे मनुष्यों के बीच में आया, फिर कार्य करते हैं। और वही बात यहां है, ये प्रेरितों का ये 17 अध्याय का एक 30 वचन से हम लोगों ने ये पढ़ते हैं, 31 वचन, प्रेरितों का 17 अध्याय का 31 वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। 32, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। एक 32 वचन, 32 वचन में हम लोगों को गहराई सीखने की जरूरत है। यस, इन दैट स्क्रिप्चर द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 32, वहां अबाउट द रिजरेक्शन द होली स्पिरिट गॉड टीचिंग, कुछ लोग उनको क्या किया, जो टीचिंग करते हैं यीशु मसीह प्रभु का वचन को, सलीब के ऊपर मुआ गया लोगों को पापों को लेके, यीशु मसीह प्रभु आदम से लेकर हर कोई देश के हर कोई जाति हर कोई मनुष्य जो आदम से लेके पैदा हो गया धरती के ऊपर, हर किसी मनुष्य के पापों की क्षमा करने के लिए, श्राप को मिटाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 1-10, परमेश्वर ने ये कुर्बानी कराए थे। और ये पुनरुत्थान की बात, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया हमारे श्राप पापों के लिए, कोड़े खाए यीशु मसीह प्रभु, लहू बहाए, सर के ऊपर कांटों की मुकुट मारा गया, हाथों में पैरों में किल्ला मारा जाने से घायल हुआ, बगल में भाला मारा और सर से लेके पांव तक यीशु मसीह प्रभु का वो कोड़े से छीना जाने से उनकी सारी शरीर जो है घायल हुआ और खून का घट बन गई, 7.5 लीटर, अब के हिसाब से 7.5 लीटर खून यीशु मसीह प्रभु का देह में से बह गया। वो खून, वो लहू, वो महिमा की लहू है, स्वर्ग से उतराया हुआ लहू है, वो पवित्र लहू है, वो किसी मनुष्य में नहीं, वो लहू किसी और धार्मिक पुरुष में, किसी धार्मिक सेवक में, कोई संत में और कोई किसी में, ऐसी लहू नहीं जो यीशु मसीह प्रभु का शरीर में से लहू सलीब के ऊपर से बहाया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ऐसे लहू से और शुद्ध किया गया हम आराधित लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वी आर द टाइम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो ये संदेश क्यों है, पुनरुत्थान, यानी कि यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर से प्राण देने के बाद समाधि में से तीसरा दिन जीव उठने के बाद में यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान हो गया, आफ्टर द रिजरेक्शन फ्रॉम द बर्बियल, यीशु मसीह प्रभु ये साबित किया कि हर कोई मनुष्य को इसी रीति से मेरे जैसा शरीर का शरीर मृत्यु होके समाधि में जाके मिट्टी में मिलके फिर उनकी आत्मा जो है जिसने रचा है जिसने भेद बनाया है उनके पास जाएंगे वो आत्मा, जैसा धनवान और लाजरिस का यीशु मसीह प्रभु ने बताया। वहां वे लोग ने वहां पैराडाइज नाम का आत्माओं की शांति पाते हुए अप टू दिस डे, कौन सा डे वो बताया है, कौन सा डे में जजमेंट होने वाला है, प्रेरितों का 17 अध्याय के 31 वचन में वो प्रभु यीशु मसीह को ठहराया परमेश्वर ने, और उसमें ये बताया है कि अब ये मनुष्यों को 31 वचन में जिसे उसने ठहराया है परमेश्वर ने ठहराया, तो गॉड हैज मेड द रिजोल्यूशन, परमेश्वर ऐसा वो ठहराव बनाया है कि एक दिन जजमेंट होएगा, वो यीशु मसीह प्रभु करेगा वो जजमेंट। चाहे कोई भी वो मनुष्य राजा लोग होने दो, न्यायाधीश होने दो, चाहे साधारण व्यक्ति होने दो, कोई देश देश के प्रमुख होने दो, प्रेसिडेंट होने दो, सभी को न्याय करेगा यीशु मसीह प्रभु। और ये न्याय करने वाला दिन को परमेश्वर ने ठहराया है। और ये वचन जो है द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 31 में बता रहे, वो भी धर्म से जगत का न्याय करेगा, है क्या? आपके पवित्र बाइबल देखते हैं कैसा न्याय करेगा, धर्म से न्याय। ये धर्म किसने दिया? गॉड ने दिया, ये परमेश्वर ने दिया हुआ धर्म है, इंसान बनाया हुआ धर्म नहीं है। इंसान बना नहीं सकते हैं धर्म, मैन कैन नॉट मेड द जजमेंट एक्टिविटीज आर रेजोरेशन एक्टिविटीज, यू कैन से लाइक दैट। उस तरह का जो हम लोगों के लिए हमारा भारत देश के लिए ऐसा समझेंगे कि हमारे लिए एक संविधान है, संविधान से हमारा देश में सभी लोग जी सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हर कोई देश, एवरी कंट्री हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ये इसी को यहां बताते हैं, धर्म से न्याय करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ परमेश्वर बना सकता है। हाँ, परमेश्वर ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, वो परमेश्वर ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को परमेश्वर ने भविष्य वक्तों के जरिए राजा लोगों के तक पहुंचाया। बात बड़ी गंभीरता है, दिस मैटर इज वेरी सीरियस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कोई भी सेवक बताएंगे, लेकिन द होली बाइबल स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर का जो पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र आज्ञाएं ये सिखाते हैं। जब कोई सेवक सीखते हैं दूसरा कलीसिया को सिखाना, ये पता है, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट आल्सो, डॉक्ट्रिन ऑफ द व्हिच इज गॉड, गॉड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय गॉड ऑलमाइटी रिसीव्ड फ्रॉम द हेवन। इस तरह का सोच विचार राजा लोग ने किया। यदि राजा शासन करते हैं, देश में रूल करते हैं, राजा सिंहासन में बैठ के कोई अधर्म से कोई कार्य किया है, कोई परमेश्वर का नियम के अनुसार खिलाफ किया है, तुरंत परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेज देते हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर के ओर से आएंगे, राजा के सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे, ये तूने क्या किया। एक बार हमारा देश में अमेरिका से सर ओबामा, बराक ओबामा सर आए हैं हमारा देश में। हमारा देश में उसने शिखर सम्मेलन किया है, और हमको, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसने ये बोल के गया है, योर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट कन्फर्म्ड, सो दैट वी हैव टू फॉलो, यू हैव टू लर्न अगाइन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ओबामा सर बोल के गया था, ये हमारे देश के तरफ न्यूज में भी है, वो सभी को मालूम है। लेकिन इसी तरह से जब परमेश्वर का कोई भी, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ कोई भी देश में, कोई भी राजा है, कोई भी सेनापति है, या कोई भी देश का और शासन करने वाले कोई भी, अगर परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ या खुद नियुक्त हो गया ऐसे कोई लोग है, परमेश्वर ये संविधान बना के उनको भेज देते हैं, सेवकों के जरिए भेजते हैं, भविष्य वक्तों के जरिए भेजते हैं। और वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है परमेश्वर ने बनाया हुआ, राजा लोग ने उसको मानकर चले, उसके बाद में इयर्स सालों साल बीतते गए एक एक देश में, उसी को देखे द बुक ऑफ जजमेंट, जजेस इन द होली बाइबल, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स एंड द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग्स, इसमें सब स्वर्ग के संविधान से देश को शासन किया, राजा लोगों को, न्यायाधीशों को दिखाई देता। यहां न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार यीशु मसीह प्रभु जगत का न्याय करेगा वो बात, इसलिए हम लोग ये बातें करने की, सिखाने की, मालूम करने की, जानकारी करने की, और समाज को, कलीसिया को, मनुष्यों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, परमेश्वर की भयभीति रखने वालों को याद दिलाने की, या ये उसके अंदर सावधान करने की ये जरूरत है। और इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, और यहाँ जो ये बात जो है, मरने के बाद भी पुनरुत्थान के अनुभव है ऐसा संदेश सिखाने के बाद वो लोगों ने क्या किया 32 वचन में, वे जिसने सुनाया है वो सुनाया हुआ सेवकों को वे लोगों ने क्या किया, टट्टा करने लगे, यानी कि मजाक में लिया है उसकी, उसको टट्टों में उड़ाने लगे, यानी कि उनकी अपमान करने लगे, राइट। आप मंगता है तो 32 वचन पढ़ लीजिए, प्रेरितों का 17:32 वचन में, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो टट्टा करने लगे, और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे, ये बात हमको सुनना है, हमको विश्वास करना है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है, पुनरुत्थान में क्या होता है वो हमको सिखाइए, इनको मालूम नहीं, हम फिर से सुनेंगे जो पूछते हैं, इनको कंफर्म नहीं हुआ है, दे विल हैविंग डाउट, उनको शंका है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर कभी सुनाएंगे। प्रियजनों, ये इसी तरह से आज भी दिस टाइप ऑफ बिलीवर्स, इस तरह के ये लोग जो फिर कभी सुनाएंगे ये पुनरुत्थान के बाद जो पूछते हैं, उस तरह से बहुत से लोगों को मालूम नहीं पुनरुत्थान का क्या होता है। हम लोग इस वचन को पढ़ के हम कलीसिया के लोगों की मान सम्मान करने लगे, और जो कलीसिया में नहीं उनके अपमान करने लगे, ऐसे बात नहीं है, बात यह है कि उनको मालूम होना चाहिए, दे मस्ट बी नो अबाउट द आफ्टर द डेथ व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द रिजरेक्शन, ये उद्देश्य है। तो इसलिए वहां फिर कभी हम सुनेंगे, कभी आप सिखाएंगे हमको, प्रियजनों, इसलिए सिखाने की बात जब आता है, ये कलीसियाओं में क्या करते हैं, पूरा वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड कंडक्टिंग द बाइबल क्लासेस, उस बाइबल क्लास में सिखाते हैं, मैंने जूम में भी सीखते हैं, द कंट्री ऑफ मैक्सिको कंट्री, कनाडा और यूके और जर्मन, अमेरिका और हमारे इंडिया के अंदर हर कोई कलीसिया पवित्र बाइबल का नियम जो है बच्चों को सिखाते हैं, ताकि आप गलत रास्ते में ना जाए, पवित्र जिंदगी जिए, धार्मिक जिंदगी जिए, और परमेश्वर कबूल करने वाला आराधना करे, परमेश्वर को कबूल होने वाली प्रार्थना करे, इस तरह का क्लासेस रखे सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए वो लोग मांगते, दे विल डिमांडेड टू द प्रीचर, लाइक सेंट पॉल, संत पौलुस को वे लोग मांगते हैं, और मांगने के बाद क्या हुआ, फिर कभी सुनाएंगे, कुछ लोग तो टट्टों में उड़ाया है, आज भी टट्टों में उड़ाने वाले लोग हैं, प्रभु के सेवकों को मजाक में लेते, और कुछ लोग क्या करते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, फिर बपतिस्मा लेने के बाद में थोड़ा दिन दिखाते हैं, फिर बाद में नहीं आते, ये उनका नुकसान है। आप ये नहीं समझो कि वो सेवक कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हमने टट्टों में उड़ाया उनको, मजाक में उनको उड़ाया, हमने लिया तो वो कुछ नहीं कर सका, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, जो लोग बपतिस्मा लेके नहीं आते उनके लिए हम यहाँ घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास हमारा निवेदन रहते हमेशा। और इस तरह से मेरे लिए नहीं बल्कि हर कोई कलीसिया में सेवक लोग यही करते हैं, और पवित्र बाइबल में भी सेवक लोगों ने यही किया। अब यहाँ हम 35 वचन में जाते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17:33, इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल गया, फिर जो लोग ने उसको टट्टों में उड़ाया है, 32 में टट्टों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया, परमेश्वर के वचन को बोलते हुए, आजकल माता पिता भी सिखाते हैं तो बच्चे टट्टों में उड़ाते, आजकल माता पिता जो प्रभु का वचन सिखाएंगे या नियम की बात सिखाएंगे उनके अपमान करते, यहां तक के बोलते हैं अपमान करते, अब यहां बोलने की जरूरत नहीं, वो क्या अपमान करता है, लेकिन वो परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत दूर है, उनकी भविष्य बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के नियम में नहीं। प्रियजनों, हम इसलिए सावधान हो जाते हैं, समाज को सावधान करते हैं, यूथ को सावधान करते हैं, उनके जीवन में भविष्य में परमेश्वर की भयभीति में रहने के लिए, धार्मिक जीवन में रहने के लिए यहाँ, क्योंकि धार्मिकता के अनुसार न्याय होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा के अनुसार दुनिया का न्याय होने वाला है। तो उस 35 वचन में हम जब आते हैं, तो वो सिखाने के बाद जो लोग कट्टों में उड़ाए उनके बीच में से संत पौलुस ने क्या किया है, वहां से उनके बीच में से ही वेंट आउट फ्रॉम देयर फेलोशिप। अब कट्टों में उड़ाते हैं तो उनके बीच में रह के क्या करेंगे? ये नहीं बोला कि हमने सिखाया तो तुम क्यों नहीं अमल करेंगे, क्यों तुम स्वीकारेंगे नहीं, ऐसा बलजबरी नहीं किया। अब परमेश्वर को भी बलजबरी से किसी को मन फिराना नहीं है, परमेश्वर सीधा सामने रखता है। यदि तुम धार्मिकता का आज्ञा को मुताबिक जीते हैं तो तुम अनंत काल का जीवन पाएंगे, मेरे पास रहेंगे हमेशा, नहीं तो तुम्हारे लिए है पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट कैसे देते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है। तो प्रियजन, हम संदेश पूरा करने से पहले 33 वचन में ये पढ़ते हैं, संत पौलुस वहां से निकल गए। बी केयरफुल, यदि कांग्रेगेशन में, कलीसिया में भी, इवन चर्च ऑफ क्राइस्ट, इवन मिश्राची मंडली, इवन रोम चैप्टर 16:16 आल्सो, यदि वचन को स्वीकार के नहीं है तो परमेश्वर हमारे बीच में से निकल जाए। यदि हमारे परमेश्वर की बातें हम जब स्वीकार के नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में परमेश्वर रहेगा क्या? निकल जाना, तो निकल जाएंगे हमारे जीवन में से। अब परमेश्वर ने कितने लोगों को इस तरह से किया, बहुत से हम देखते हैं। योना को परमेश्वर ने बताया कि नीनवे में जाके तुम प्रीच करो, वो तर्शीश जाने लगे। फिर परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से, फिर उनकी वजह से वो शिप में पानी की जात में जितने लोग हैं सब मरने वाले हैं, उनके सारे सामान जो फिर भी फेंक दिया है, तो वो कब जोना। फिर आखिरी में उनको मन फिरावा हो गया है और सबके सामने आके ये बताया कि ये मेरे वजह से हो रहा है, एक काम करो, ये परमेश्वर है ना, हमको कुछ छोड़ने वाला नहीं है। This is sure, he is going to punish him. Punishment. We can face all of us in the ship. जितने लोग पानी के जात में, सभी लोगों को ये सजा मिलेगी इससे, इसलिए उससे अच्छा हमको अकेले को, हमको अकेले को उठा के क्या करने को बोले, पानी में। क्योंकि धार्मिकता के बारे में परमेश्वर के सेवक संत दाऊद क्या बोलते हैं, वो संत भी है, भविष्यवक्ता भी है, वो राजा भी है, परमेश्वर की गवाही भी है। वो क्या बोलते हैं, धार्मिक पुरुष जो है, हु हैव इन द गॉड फीरिंग लाइफ, रिपेंटेंस हार्ट, परमेश्वर की भयभीति में जो जीने वाला धार्मिक व्यक्ति है, वो 7 बार गिरते हैं तो 7 बार भी वो उठता है, क्योंकि उसके अंदर वो बीज है, उसके अंदर वो वचन है, वो वचन उनको जिलाता है, वो पश्चाताप कराता है। साथ एक बार गिरता है तो उसको पश्चाताप करता है। योना भी इसी तरह से किया, हमको परमेश्वर ने जाने के लिए जहां कहा था, लेकिन मैंने गलत किया है, अब मैं किसी वो परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं, ऐसा क्यों मेरे वजह से और भी लोग मरेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं उठेंगे। धार्मिक मनुष्य 7 बार गिरते हैं तो 7वां बार उठता है, क्योंकि उनके पास प्रभु है, अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर संत पौलुस ने क्या किया, जो टट्टों में उड़ाता है वहां से पवित्र आत्मा परमेश्वर संत पौलुस में जब था, तो संत पौलुस में से पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या किया, संत पौलुस को लेके उनके बीच में से आज बहुत से चर्चों में झगड़ा हो रहा है, बहुत सी कमिटी ब्रदर्स लोग झगड़ा कर रहे हैं, चर्च की प्रॉपर्टीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ऑफरिंग्स के लिए झगड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, लोग कैसे विश्वास करेंगे? अभी भी उस तरह से हो गया जैसा एक झाड़ में एक एक एक बहुत बड़ा वृक्ष में फल आता है, फल आने के बाद में जब वो पकता है वैसा पूरा इस सृष्टि का उम्मा जो है, इस सृष्टि का हालत जो है, एक झाड़ का फल जैसा पकता है, उसका पक गया है, और पकने के बाद में झाड़ का फल क्या होगा? पूरा पकने के बाद क्या होगा? तो फल क्या होगा? और जब तक वो कच्चा है तब तक वो ऊपर का जो है उसकी डांडी ये सब पकड़ के रखता है। आप ज्यादा अच्छा समझने के लिए वांगी को देख सकते हो, वांगी वांगी को ऊपर वो छिलता रहता है, वांगी को ऐसा पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चिक्कू देखा कितने लोग ने, चिक्कू के ऊपर डांडी जो रहते है वो ऐसा पकड़ा हुआ रहता है, जब वो ज्यादा पक जाता है वो ऊपर का पकड़ा हुआ वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे हाँ सोड़ना, और फिर फल फल क्या होगा? तो उसी तरह से ऐसी सिचुएशन में सारी जगत का परिस्थिति आ गया है, सारी सृष्टि, सारी देश, सारी समाज इसी तरह से परमेश्वर के बिना भंग हो गया है, परमेश्वर के बिना नाश होने जा रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध जो है देशों के ऊपर, समाजों के ऊपर आ रहे हैं। ये परमेश्वर के संदेश है। प्रियजनों, हम ये देखते हैं उस समय में जब परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का नियम, द डॉक्ट्रिन ऑफ द होली न्यू टेस्टमेंट जहां नहीं है वहां यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं मेरे विरुद्ध में अगर कोई भी खड़ा हो जाता है तो राज्य होने दो, चाहे वो घर होने दे, वो ठीक है या नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगी, इट विल बी ब्रोकन। तो वहां से पवित्र आत्मा परमेश्वर निकल गए। हमको ये भयभीत रखना चाहिए यदि हमारा जीवन में, परिवार में परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की और महिमा की धार्मिकता हमारा जीवन में नहीं है, हमारे अंदर से परमेश्वर निकल जाएंगे। फिर हम जो है वो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन में जो पढ़ा था, सारी मनुष्यों के उससे भी बेकार, उससे भी दलिदर हम नहीं है। द स्क्रिप्चर चैलेंजिंग, वचन चैलेंज करता है। फिर वो बोलता है प्रियजनों 32-33 में हम पढ़ने के बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर संत पौलुस के जरिए निकल गया उनके बीच में से। अब 34 में आते हैं, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 34, परंतु कुछ मनुष्य उनके साथ मिल गए। वचन को प्रचार करने के बाद में कुछ लोग तो टट्टों में उड़ाया, देखो हम परमेश्वर के वचन सीखते भी कर। द वर्ड ऑफ गॉड प्रीचर इन द असेंबलीज इन द कॉन्ग्रीगेशन, वचन स्वीकारने के बाद में वो ये आज बहुत ही जरूरत है। वैसे तो खाना पीने का सभी लोग कमाते हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, सभी लोग नौकरी करते हैं, पर दे अलार्म इज नॉट चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे अलार्म नॉट इज रिपेंटेड गॉड्स लीडिंग लाइफ, दे अलार्म डोंट हैव द बॉर्न अगेन लाइफ। वो सभी लोग जो है नए सिरे से जन्म लिया हुआ परमेश्वर के संतान नहीं है, जो आपके साथ में जॉब करते हैं, आपके साथ आप 40,000 उठाते हैं तो बोलो 60,000 उठाते हैं, पर दे डोंट हैव अ बॉर्न अगेन लाइफ। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की पगार पाते हैं, उनको नए सिरे से जन्म नहीं है। वचन सीखते हैं जन्म है क्या, बात वो नहीं है। यहां परमेश्वर कलीसिया को सिखाता है, बात यह है कि तुम परमेश्वर के अंदर पाप की क्षमा पाया हुआ, यीशु मसीह प्रभु के बलिदान में शुद्ध किया गया हुआ, और नए सिरे से जन्म पाया हुआ, पाप पवित्र बनाया गया, तुम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्वीकारते हैं, तुम आराधना करते हैं परमेश्वर स्वीकारते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो परमेश्वर निकल जाते हैं हमारे बीच में से। फिर इसके पहले जो विश्वास किया था, उसके पहले जो बाइबल स्टडी किया था, जो ज्ञान प्राप्त किया था, फिर वो सब क्या है। इस तरह से यहां वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर निकल जाने के बाद में, लेकिन जब प्रभु का वचन सिखाया था, कुछ लोगों ने टट्टों में उड़ाया था ना, उनके साथ में और भी कुछ लोग उस वचन में सुने थे, फिर वो लोग 34 में दिखाई देता है। आप 34 वचन देखिए, आप प्रेरितों का 17 अध्याय का 34 वचन देखिए, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 वर्स 34 में क्या बताते हैं, परंतु कुछ मनुष्य उनके साथ मिल गए। किनके साथ? संत पौलुस के साथ। पवित्र आत्मा परमेश्वर संत पौलुस के जरिए और सिलास तिमोथी मार्क बर्नबास ये सब एक टीम टीम मिशनरी एक्टिविटीज टीम मिशनरी वर्क मिशनरी यानी परमेश्वर ने दिया हुआ काम को पूरा करना उद्धार की प्रचार करना पाप की क्षमा का प्रचार करना नरक से बचाने की प्रयास करना कौन करता है ये काम कोई नहीं करता ये काम सिर्फ प्रभु मसीह की कलीसिया करता है क्रिस्ताची मंडली करना करता है हम प्रभु को धन्यवाद देते सिर्फ क्रिस्ताची मंडली करती है किसी को पड़ी नहीं है यदि कोई करते हैं तो वो मनुष्य के दिमाग से करते हैं वो अपना बाइबल को साथ में रखे अपना पैसा कमाने के लिए मनुष्य ने बनाया हुआ झूठा प्रचार करते हैं झूठा प्रचार के बारे में भी पवित्र बाइबल सिखाते हैं किसी को सुनना है या मालूम करना है तो बाद में मिलते हैं ब्रदर ब्रदर्स सो बात यहाँ यह है कि उस वचन प्रचार करते समय संत पौलुस के जरिए उनकी संदेश पुनरुत्थान का संदेश पाप की क्षमा का संदेश मरने के बाद की संदेश सुनाया गया है अभी भी सुनाते हैं उस समय से लेके संत पौलुस के समय से लेके प्रेरितों के समय से लेके सुनाते जाते हर देश में हर जगह में सुनाते हर कलीसिया में सुनाते हैं और यहाँ सुनाते हैं यहाँ भी 45 साल हो गए सुनाते सुनाते हम प्रभु को धन्यवाद देते सिंस 45 इयर्स दिस टीचिंग्स इज कंडक्टिंग हियर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट लेकिन बात यहां ऐसा आया है कि टट्टों में उड़ाने वाले उड़ाते हैं मजाक में लेने वाला लेते हैं प्रभु के अपमान करने वाला अपमान करते हैं सेवकों को अपमान करने वाला करते हैं लेकिन वो आज नहीं रहे लेकिन प्रभु ने क्या बताते हैं तट्टों में उड़ाने वालों के साथ में और भी कुछ लोग हैं जो लोग एक्सेप्ट किया है ये पुनरुत्थान के बारे में ये पाप की क्षमा के बारे में वे लोग ने एक्सेप्ट स्वीकार लिया है वो लोग ने विश्वास किया है वे लोग ने बैप्टिज्म लिया है और वे लोग ने उस संत पौलुस के साथ में सहमत हो गया प्रभु की आराधना करने लगे महिमा करने लगे वो वचन 34 में हम देखते हैं 34 परंतु कुछ मनुष्य के साथ मिल गए हैं परंतु कुछ मनुष्य संत पौलुस उसके लिखा है उसमें 34 में पर वो उसके मतलब वो वहां संत पौलुस है उनके साथ मिल गए हैं संत पौलुस नॉट ओनली ही हिमसेल्फ सिंगल ही इज विद टीम सो वो साथ में और भी है सेवक गण तो हर कोई कलीसिया में सेवक गण रहना चाहिए सेवक नहीं रहना चाहिए बी केयरफुल दिस पॉइंट कलीसिया में सिर्फ सेवक नहीं रहते सेवक के साथ में और भी ब्रदर्स रहते हैं ब्रदर्स डीकन्स रहते हैं सेवा करने वाले एल्डर्स रहते हैं कलीसिया में एल्डर्स मतलब मंडली से वडील मन तो मराठी मध्य वो शब्द है वडील मन के वो पिता है लेकिन अभी इंग्लिश में क्या दिया है चर्च एल्डर्स कलीसिया है तो उसमें चर्च एल्डर्स भी रहता है इफ देर इज अ चर्च द चर्च मस्ट हैव द एल्डर्स ऑल्सो Elders are good and lot of experience in the scriptures, holy scriptures. पवित्र बाइबल के वचन में वो बहुतायत सा अनुभव लेके कलीसिया में ध्यान करने वाले लोग वो उनको बोलते चर्च एल्डर्स अब हम इतना सालों से सीखते हैं तो हमको एल्डर बनना चाहिए कि अपनी सफाई करने वाले सेवा करने वाला बनना चाहिए एल्डर बनना चाहिए ना क्योंकि इतना सालों से अभी 1984 से आप 1994 से या 2000 में समझो आपने प्रभु में आ गया है या बाइबल ट्रेनिंग लिया है प्रीचर ट्रेनिंग लिया है अब 90 से लेके अभी तक कितना साल हो गया 90 से 2000 ये 10 साल और 2000 ये 26 साल और 10 साल कितना साल होगा 36 साल हो गए ना सिर्फ 36 ईयर से आप प्रभु में हैं प्रभु में सीखते हैं ट्रेनिंग करके आए प्रीचर्स ट्रेनिंग में गए और सर्टिफिकेट लेके आए तो अभी तक एल्डर बनना चाहिए क्या ऐसे नहीं बनना चाहिए सवाल का जवाब सीधा आता है कि एल्डर रहना चाहिए देखभाल जवान लोग क्या करते हैं संडे वर्शिप में अटेंड हो रहा है तो प्रभु की समय को दुनियादारी में जाके वो समय उधर गवा के ये आशीष हो जाते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया एक हफ्ता से माता पिता प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सेवक लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के मुताबिक आपको समय मिलने के बाद भी आराधना में नहीं आते हैं, आपके लिए जो परमेश्वर ने तय किया हुआ, हम सबके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो महान बहुतायत आशीर्वाद जिसको हमने रिचुअली ब्लेसिंग्स कहते हैं, संडे वर्शिप में हमको मिलता है, वो खो जाते हैं। तो इस तरह का शिक्षा है कि हम लोगों को नहीं प्रियजन, इसलिए कलीसिया अगर है, इफ देयर इज ए चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च मस्ट बी हैव द एल्डर्स डीकन्स एंड सर्वेंट्स प्रीचर्स, वचन सिखाने वाला रहना चाहिए, सेवा करने वाले रहने चाहिए और देखभाल करने वाले रहने चाहिए, ये सभी लोगों के साथ में कलीसिया है। ऐसा नहीं है कलीसिया, ये कलीसिया का ये रूपरेखा है, किट है, दिस इज इमेज ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, इमेज ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी 34 में हम क्लोजिंग में है, हम ध्यान देते हैं प्रभु वचन में 34 में क्या बताते हैं। हाँ, परंतु कुछ मनुष्य उनके पौलुस के साथ है और उनके साथ में जितने भी टीम है, याक फेलो वर्क इज गोइंग हियर विद द होली स्पिरिट लीडिंग, पवित्र आत्मा चला रहा है, पवित्र आत्मा कराते हैं, आफ्टर द डेथ व्हाट विल बी हैपन, मृत्यु के बाद में क्या होने वाला है, अनंत काल का जीवन में कैसे पहुंचेंगे, पुनरुत्थान कैसे होएंगे, ये सारी बातें सिखाया। सिखाने के बाद कुछ लोगों ने टट्टों में उड़ाया, कुछ लोगों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन स्वीकारा वो लोग बहुत लोग, और वो लोग एक मिशनरी में है, वो काम करते हैं, वो बी पार्ट में क्या बताते हैं, एक्ट चैप्टर 17:34 बी पार्ट में क्या बताते हैं, और विश्वास किया और उनमें दिदुनीसियुस जो अरियुपस का सदस्य था और दमारिस नामक एक स्त्री भी थी और उसके साथ और भी, हाँ वो तो सब लोग मिलते पड़े, और भी
1: लोग थे,
0: और भी लोग थे, मजमू मेनी पीपल विद देम। देखो जब वचन को हम पढ़ते हैं, उसकी विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, रिजल्ट कितना बड़ा निकलता है। वहां स्त्री लोग भी है, इसका मतलब स्त्री प्रीच नहीं कर रहा है, प्रीच करते हैं पुरुष, स्त्री उनको कॉपरेट करते हैं, उनको क्या क्या व्यवस्था चाहिए, व्हाट इज द सिचुएशन मच बी देयर, क्या अरेंजमेंट करना चाहिए, क्या साफ सफाई करना चाहिए, क्या पानी रखना चाहिए, क्या स्त्री का पार्ट इन द फीमेल पार्ट इन द कॉन्ग्रीगेशन, द फीमेल पार्ट इन द वर्शिप, व्हाट दे मस्ट कंप्लीट द एक्टिविटीज इन द वर्शिप, समझ में आता है, इसमें आशीर्वाद है प्रियजनों। इस तरह का और भी लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, वचन सिखाते हैं, सेवक लोग के साथ में कितने लोग हैं, और भी लोग हैं, कुछ लोगों का नाम दिया है, कुछ लोगों का नाम दिया नहीं है, लेकिन इधर हम लोगों को उल्लासनगर में मसीहा की कलीसिया चलता है, लेकिन प्रभु हम लोगों के साथ बहुत से लोग जुड़ा है, बहुत से लोग बीच में आते हैं, बहुत से लोग और उधर बुलाते हैं और है प्रभु के अंदर। इस तरह से यदि हम इतना बड़ा आशीर्वाद को छोड़ देते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर के ज्ञान को, पुनरुत्थान के ज्ञान, द विजडम माइंड ऑफ द रिजरेक्शन, यहां आज परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया है, और ये जो पुनरुत्थान के बारे में कट्टों में उनके जैसा हम नहीं उड़ाना, इनको लापरवाही नहीं करना है, उनको देखी अनदेखी नहीं करना है, विश्वास करना है और अनंत काल का जीवन पाना है, कलीसिया में रहकर बहुत ऐसा आशीर्वाद पाना है। सर झुकाते हैं हम परमेश्वर को वचन के लिए, धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हेवेनली फादर ग्रेसियस, वी थैंकिंग यू फादर फॉर योर विद योर फेलोशिप एंड विद द होली स्पिरिट लीडिंग, गॉड तूने ये पवित्र वचन हमें सिखाया है प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, वचन के माध्यम से हम लोगों को ये बड़ी आशीष दिया, तेरे धन्यवाद करते हैं, जितने लोग सुना है प्रभु और भी जो लोग सुनेंगे, और परमेश्वर पिता आए हुए हम सभी लोगों को इसके अंदर की सारी वो पवित्र आत्मा का ज्ञान, पवित्र आत्मा का कृपा वरदान, पवित्र आत्मा का वो जो बड़ी बहुतायत सा आशीर्वाद, रिचली ब्लेसिंग्स प्रोवाइड ऑल ऑफ अस इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से ये सारी प्रार्थना करते हैं, कबूल कर पिता, आमीन।